रोग सब नाशे गए कलेश रोग सब नाशे।

खेत वाल जा रहा सी, जाके ठाकर खूह चल रहा थले रख दिता। आखिर ठाकर जी ए तरलोचन कर रही जिथे पानी की थोड़ है, ए जग का खूह है, सब कुछ इथे ही मिलेगा, ताजिया सब्जियां मिल गया, नहाने की बड़ी मौज है, वेखो खूह चल रहा है, आप ही हूं स्नान करो ते मैं नका मोड़ा मां मुक्ती गल स्नान कराया। तन्ने ने मल मल के नका मोड़ के आ गया, हूं भगवान बाहर रख दिता है। इतने चिर तन्ने करवाली आ गई प्रशादा लेके, बड़े ही प्यार ठाकुर परने उत्ते रख दिता है। रुखा सुखा जोशी एक कृति के घरों आ गया। तन्ने ने अर्ज की, भगवान जो गऊ सूई सी ओ तो हुण आप जी दे बटांदे विच पंडित जी ने लै लई है, हुण ते आपां जो कुछ भी करो रुखा सुखा आया है ओही खाना है, फिर कोई बात नहीं, दो चार महीने तक दूसरी गऊ सुन वाली है, लहरां दरां बन जावन गियां, आओ भोग लाओ। हुण उसने पता नहीं सी भोग लाउणा है कि खाना है। काफी समा बहन तो बाद उसने स्त्री नूं आख्या, तुसीं जाओ जी घर नूं, शायद ठाकर दी संगत न होवण, तुसीं चले जावो, अजे ठाकर नवा नवा आया है, साडे घर दे बाहर तो जाणू नहीं। घर वाली तोड़ दित्ती, हुण तन्ना जोधड़ियां करदा है, अर्जा करदे है, भगवान खा लो प्रशादा, वेखो मैं भी कल शाम का ही भुखा हां, सवेर का मैं कुछ भी नहीं खादा, दिन ढाले पै गया है, शामा पै रही हैं, वो राही राहे राहे जा रहा है। उसने सुनिया एक आदमी पत्थर के नाल गल्ला करता है, भगवान जी खाओ ना कुछ ना कुछ। उस आदमी ने नेड़े होकर सुनिया, वेख्या कौन है, ये तो तन्ना जट है। आख्या ओ तन्या, पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की, तन्या पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की। तन्ने ने अखा खोली, आखिया जाओ जी जाओ, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। हुण अगली शामा भी पै गई, तन्ना हुण आ गया है अपने जटपुणे ते, भगवान हुण तू मेरे वल देख ले, मेरिया आंदरा हुण भुखियां बिलक रही हैं, हो सकता है तेनू पंडित ने कुछ तरोताजा चीज खुआई होवे, तेनू भुख नहीं लगती। जिस तरह दूसरे दिन का दोपहर आया, तन्ना बजट बचा गया, ऐ भगवान देख ले, मैं मर जाना है तो तेन मार देना है, दात्री उठा ली। भगवान का सिंघासन डोल गया, एक बंदे का विश्वास देख के है, ए बंदा अपने आप अपने कले की भी दाती मार देगा, लोग मेरी होन तो मुनकर हो जावणगे कि मैं नहीं हां। पत्थर के बिचों हथ बाहर निकलिया, तन्ने ने आख्या इवें तो गल नहीं बननी, उप ठाकर जी पंडित के सामने साक्षात बैठ के रोटी खा में ते जट नूं कल्ला हथ बखालता है, इवें तो गल नहीं बननी। हुण भगवान साक्षात रूप में आके बैठ गए, प्रसाद छकिया। दूसरे दिन का दुपहर चढ़ चुका है, भगवान तैं मैनू बहुत भुखा मारिया है, देख आपां ने हुण कुछ नहीं करना, आओ देख ले हाल चलदा पिया, खूह नके तैं मोड़ने ने, गाइयां तैं चारनियां ने, जट सौण लगा है खूह थले तू तंत छावे। हुण तन्ना देखता है ठाकर बोलदा नूं हक रहा है, क्यारे मोड़न जा रहा है, गाइयां नूं मोड़ के लिया रहा है। इतनी देर तलोचन भी आ गया, सुना भी तन्या की हाल है, ठीक है पंडित जी तुहाडी कृपा, ठाकर दा की हाल है। पंडित जी जदों दा तुसीं मैनूं ठाकर दिता है, मेरे घर ते लहरां बहरां हो गई हैं। पंडित आश्चर्य हो गया कि जट भोला है सचमुच, ते ठाकर ते मैं अपने कोल लिता के रखे ने, मैं तो इसनूं झूठी मूठी दा ठाकर दिता सी, जट है ना पता नहीं ठाकर की हुंदा। पंडित जी तुहाडी बड़ी कृपा, तन्ने ने उठ के नमस्कार कीती। पंडित वेखो ओ ठाकर गाइयां मोड़न गया है, ओह हुण वेखो दूजे कैरे नूं पानी छड़ दिता है। पंडित आखदा है जेठ हाड़ दा महीना है, जट बौंदल गया है तुपां दे नाल। पंडित जी वेखो भगवान तुहाडे नजदीक दी गुजर गए ने, तुहानूं पछाणदे नहीं। तन्ने ने आख्या, पंडित सोची पै गया है, तन्ने

आशिक नसब दिल दे बेड़े चानन होसी, दिल दे बेड़े चानन होसी, दूर चना दे चरना निश्चय करना, दिल दे बेड़े चानन होसी।

गुरु साहिब जी का अपना ही परम पवित्र तन मन धन पिंड प्राण जाहो जलाल तुझको इत शाम इष्ट रूप निष्ठा अलकिस्सा गुरु महाराज जी का परम पवित्र हिरदा ते अपना ही रूप गुरु खालसा सात संगत माई भाई जीओ प्यार सत्कार उत्साह उमा जाओ शाओ चाओ उमाह नाल संपूर्ण फतेह गजारो जी वाहिगुरु का जितनी दास ने प्रेरणा शब्दों द्वारा दिती है मेरी तसली ने हुई एक बार फिर उचारो वाहिगुरु जी का इनी फतेह का उत्तर त्याग जे मैं एक बारी कहंदा खालसा जी बजाओ फतेह तां इन्नी कमजोरी नाल दिंदे तां बजा सी मैं ते बड़े शब्दां दी भरमार नाल अलकाबो आदाब नाल आप जी नूं इल्तजा कीती सी तो एक बारी फिर कृपालता करो उचारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लख लख वधाइयां होवन आप जी नूं अपने ही पवित्र प्रकाश दिन दियां कोटान कोट मुबारक होवन सृष्टि दे कोने कोने अंदर सुशोभित गुरु नानक नाम लेवा नूं अज दी पवित्र बैसाखी दियां अनंत बेअंत खुशियां मुसरतां शादमानियां ते मुबारक होवन दीन दुनिया लोक परलोक ते सूक्ष्म आत्मावां जो सचखंड विच वस रहियां ने उहनां नूं इस पवित्र बैसाखी दियां जिसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे राही दुनिया उत्ते एक नव जीवन लियांदा अते जितना नाज फखर गौरव इस दिन ते कीता जाए ओ बजा है। इसलिए सामर्थक बैठियां संगतां नूं देशां दे संतरां विच सुशोभित अज दे दीवान सजाण वालियां संगतां नूं आलमे अरवाह विच वसण वालियां रूहां नूं कोटां कोट वधाईयां क्योंकि साडी अरदास दा ए अनिखड़वा अंग है जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा है। जे मैं इन्नी क सीमा अंदर बैठिया संगतां नूं वधाई देवां ते अरदास दे इना अखरां दी सही कदर कीमत न पाई जा सकेगी क्योंकि अरदास दा ए हिस्सा है जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा है। देव तेग फतेह बिरद की पै श्री साहिब जी सहाय तो पंथ दी चढ़दी कला दी अज सारिआं नूं वधाई होवे। अज दा पवित्र दिन पंजाब दी सरजमी अंदर श्री अनंदपुर साहिब जी दी पुन भूमि उत्ते केसगढ़ साहिब ते अनंदगढ़ साहिब दी मुकद्दस धरती उत्ते जिवें मनाया जा रहा है कमेटी ने चंद वरिआं तों खास तौर उत्ते इस पुरब नूं धूमधाम नाल मनाउण वल ध्यान दित्ता है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो रह रह के ओ नक्शे ओ तसव्वुरात ओ ख्यालात ओ नक्शाजात अखां दे विच मुनक्श हो रहे ने मुनक्श हो रहे ने कि किवें गुरु कीआं संगतां अज उत्थे किरत किरत हो रहीआं होवण गीआं किवें केसगढ़ साहिब दी उच्ची ठेरी तों अज बाणी गुरु जी दे कीर्तन रिले हो रहे होवणगे ते किवें कौम दे बड़े बड़े विद्वान आलम फाजल अदीब मुसन्निफ लिखारी मुतरजम अते बड़े बड़े आमल बंदे गुरसिख गुरमुख गुर संत भगत जन उत्थे कठे होके कौम दे नां कोई संदेश दे रहे होवणगे असीं अपना हिस्सा इत्थों ही पा रहे हां। एक बारी फिर प्यार नाल फतेह गजाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा धर्म अंदर मजहब अंदर धर्म अंदर अज दे दिन एक परिवर्तन आया सी। मैं दो बारी मजहब ते धर्म कहा है वखरियां चीजां हुंदियां ने मजहब होर हुंदा है धर्म होर हुंदा। धर्म तां उहदा भी है जो रब नूं नहीं मनदा धर्म तां उहदा भी है जो परमेश्वर नूं एक नशा कहिंदा है या तसव्वर कहिंदा है या कईआं ने खाण पीण वास्ते लोकां लई हउआ बनाया है कोई उहदा भी धर्म है। लेकिन मजहब कुछ खास चिन्ह धारण करन नूं कहिंदे ने। दुनिया अंदर किसे भी कौम मिल मजहब नूं वेखिए उसदे कुछ चिन्ह हन उहनां दा धारण करना
मजहब कहलांदा है, लेकिन एक गुण ने, एक प्रिंसिपल्स ने, एक ड्यूटीज ने, इसे तरह विशेष गुण ने जो सारी मनुखता अंदर सांझे हुंदे ने, उन्होंने धर्म कहंदे। इशारतन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अमूल शब्द भंडार अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने जिक्र किया है, आलमगीर धर्म का जिक्र चिन्हां दे राही किया है, जैसा कि आसा दीवार अंदर सुनार का जिक्र है। सुनार मीन जनेऊ, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत मठ, धागे का जनेऊ। जनेऊ भी चार प्रकार का, ब्राह्मण का होर, खत्री का होर, शूद्र का होर, वैश का होर। इन्हां चार ही किस्म के जनेऊआं दे पाउण दीआं रुत्तां भी चार ने। केवल ब्राह्मण नूं बसंत रुत्त विच जनेऊ पैंदा है, बाकी सारिआं नूं इस रुत्त विच जनेऊ नहीं पैना आएगा। पर गुरु साहिब जी ने आख्या किसे रुत्त विच जनेऊ पाया जाए ते किसे किस्म दा होवे। जद तक जनेऊ पहनण दे नाल नाल ए मजहबी चिन्ह दे नाल नाल धर्म नहीं अंदरों सुफुट हुंदा, दया नहीं आंदी, संतोख नहीं आंदा, जत सत नहीं हुंदा बंदे अंदर, उन्ना चिर तक जनेऊ दा सही मकसद हल ना होया। दया कपा संतोख सूद जत गंढी सत वंट, इसे तरह नमाजां दा जिक्र है। पंज वेले दी नमाज अनेका लोग अदा करते हैं, लेकिन ए नमाज इको ही कौम तक महदूद है, सीमित है, लिमिटेड है। नाल दा गुआंढी बंदा कोई हिंदू नमाज नहीं पढ़ता, कोई ईसाई नमाज नहीं पढ़ता, केवल अहले इस्लाम नमाज गुजारते हैं। अच्छी चीज है, पैगंबरां बख्शी है। बाबे नानक ने आख्या इन पंजा नमाजा दे नाल नाल जो मजहबी बात है ये धर्म का चिन्ह नहीं सामने आया ते नमाजा कई बारी हंकार का कारण बन जाएंगे। महाराज पंजा नमाजा नाल धर्म केड़ा है, जे नमाजा पदा करनिया मजहब है तो धर्म की होया। तो गुरु साहिब जी ने आख्या पंज नमाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नाय पहला सच। पहली नमाज गुजारन वालिया जे तू सच नहीं बोलता ते नमाज का पूरा फैज नहीं हासिल होगा। पहला सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदा है, चौथी नीयत रासमन, पंजवी सिफत सनाए, सिफत सनाए मैंने कीर्तन, पंजवी सिफत सनाए करनी कलमा आख के तो मुसलमान सदाए, नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पा। तो मजहब होर हुंदा है, धर्म क्वाइट अनदर थिंग होर हुंदा है। कृपान पाउण तो बाद, सजाउण तो बाद, पंज ककारी होण तो बाद हाले कुछ अंदरले धार्मिक ककार हन जिन्हां दी लोड़ ही नहीं बल्कि अशद जरूरत है। तो सत्संग जी अज दा वो दिहाड़ा है जिस दिन मजहब अंदर भी परिवर्तन आया ते धर्म उत्ते सतगुरां ने जोर नाल दृढ़ होण दीआं ताकीदां कीतीआं। कुछ बरे पहले इस बैसाखी तो 1699 दी बैसाखी तो कुछ बरे पहले श्री गुरु महाराज जी ने डूंगी सोचना एकांती होके एकांतवास करके जिस अरसे गण वालिया ने 11 महीने 11 दिन ते 11 घड़ियां आखिया, इन्ने एकांतवास तो बाद गुरु साहिब जी ने एक गल सोची के मेरे देश की राजधानी अंदर दिल्ली दे दिल अंदर चांदनी चौक अंदर मेरे पिता जी दी चिट्टी दोपहर वेले लखोखा दर्शकां दे वेखदियां वेखदियां बड़ी बोल्डनेस नाल, शजायत नाल, जुरत नाल, दलेरी नाल, मर्दाना बार शहादत दे देण दा कोई असर नहीं पिया, कोई एदा परिवर्तन नहीं होया। नाल ही गुरु नानक दे मिशन नूं सही तौर ते समझ लैण वाले मेरे पिता दे परम सन्मान योग साथियां ने दुनिया दे सामने
ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਨੋਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਸਨ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਸਖੀ ਦਾਸ, ਜਤੀ ਦਾਸ, ਇਹ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਸਾਧੂ ਸੇ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਅੰਦਰ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਸਨ ਗੌਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਪਰਾਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਪੰਡਿਤ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਸੀ, ਕਰਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਈ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਰੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈ, ਬਾਣੀ ਪੜਨੋ ਹਟ ਜਾ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੂਈ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਖੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਜੀ ਦੇ ਦੇਗ ਵਿਚ ਉਬਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਪੈਗਾਮ ਲਿਖੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1699 ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਨੇ, ਪੜਪੋਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਵ ਸੁਖਦਾਤੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜ਼ਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜ਼ਾਏ, ਸੁਧ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲਨ, ਅਕਾਲ ਸੁੱਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਬੂਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਤਖਤ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਮਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਪਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਾ ਹਵਾਈ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਆਬਦਾਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣੇ ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਸਵੱਈਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਨਹੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੇ ਅਕਸ਼ਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਹੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ

पूछा बादशाह बड़ा आदमी कौन है, जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

चंद्रम जल कर संगम के अवध वंदन चंदन सुगंध।

شب روز گشت

ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰਿਖਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵਲਾ।

संत बाबा तस्वीर महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी। कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा है भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे कम करना पएगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना कम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवांगे। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया कल आपां भी चलांगे पाए। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते नहीं ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखद्या वेखद्या बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। गुरु की सात संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की सार संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

چه آلہ چه ادنا چه شاہ چه فقیر ایک اونکار سدگور پرساد اساں

अनक जन्म बीती अन फरमाई, अनक जन्म बीती अन फरमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई, दिन रैन

0: चढ़ाओ, बिनी रंजन मचाओ,
1: सिखी सिखा गुरु बिचाओ, नदी का नंगा पाओ,
0: ਸਭ ਕੋਈ

पर जारो राम को मेरा कांटा लात्या जाए हम पर जारो राम को हम पर

0: प्रभु है तू सच्चा साहेब सत वाले दिन किसी से पार पाया नानक तेरे बतान
1: लोक सतन ज्ञान सतन वेद सतन ब्राह्मण।

रहा है, पंडों में दोस्ती पंडो चले रहा है, पंड मुआ पन पालिया पन बंदा सोख मंदा खेत राजा पंडो ही पंडो ये पंडे बाजना कोई ना पंडे बारा कुछ जा सोए।

भरम अर सुपन मनोरथ सत पदारथ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेसी।

कतहु सुचेत हो के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नू मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। जे तुसी खड़के कह दियो आओ लोको मैं तुहानू प्यार दिया, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ते पहल तू करनी है, प्यार असां देना है लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए। ना भाई, ओ नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा एही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिशाच कहू प्रेत हो कहू हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

देतु हो कहूं देवतान के दीवान में विराजमान कहूं दानवान को गुमान मत देतु हो कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेतु हो कतहु विचार अब विचार को विचार तु हो कहूं निज नारक पर नार के नकेत हो कहूं बेदरीत कहूं ता स्यों बपरीत कहूं।

सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों से नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला का यह शब्द है। इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री जब तेरा त्रिही प्रसन्न नहीं है तो श्रृंगार का की अर्थ होया, श्रृंगार का की मतलब है, जब फिर ही नहीं फिर वाली ही नहीं तो तेरे श्रृंगारा का की मायना। श्रृंगार ते फिर दे नाल ही सुंदर लगते हैं तो बिना फिर तो श्रृंगार करने वाली औरत नू कहिंदे हन दर घर ढोई नाल है। उसनू ना दर घर दे विच किते भी कोई ढोई नहीं हुंदी, दरगाह झूठ खुआर अते दरगाह दे विच कोई झूठी हुंदी है क्योंकि उसने किस लई श्रृंगार किया है अते ओ खुआर हुंदी। आओ अज इस कीर्तन नू पिछले कीर्तना दी लड़ी दे नाल जोड़िए। जब तेरा अंदर ही गलिया पिया है सब गुण तेरे गल चुके हैं अंदर गलिया पिया है और उपरों तू श्रृंगार कर दी तेरे सारे ही गुण गल गए हैं, सारे तेरे गुण गल गए हैं फिर तो दूर जान नाल, फिर तो दूर जान नाल मंदिर दे विच भगवान होवे, मंदिर दे विच अगर भगवान ही नहीं रहा तो फिर मंदिर कादा रह गया, एक सुन्नी इमारत रह गई। तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु की पत्नी सी, औरत सी, एकाया जब तू उस नालों ही टूट गई फिर तू सुहागण किस तरह रह गई, फिर तू सुहागण ना रही, फिर तेरा दर्जा सब तो उत्तम ना रहा अते उस फिर तो वाहिगुरु तो अकाल पुरख तो आत्मा तो दूर चली जान दे नाल तेरे सारे ही गुण गल गए हैं। असी सुनिया सी ना हर बिसरत तेरे गुण गले, जदों तेरे सारे ही गुण ही गल चुके हैं अंदर टोटल रॉटन हो चुका है तो तेरे बाहरले श्रृंगार बाहरलियां सुगंधियां बाहरली सजावट मांग छपाया होया संधूर पहने हुए गहने कि तेरे उस अंदरले गले हुए हिस्से नू ये छुपा सकेंगे। जब तेरे तमाम गुण गल चुके हैं रटन हो चुके हैं अंदर तेरी दी ये तस्वीर है तो तेरे श्रृंगार का की अर्थ है। गुण गल चुके हैं आज दे इस कीर्तन बहुत गौह दे नाल सुनना विचारना, क्योंकि गुरु बाबा जी आखते हैं कि ऐ स्त्री
ਐ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਸ ਫਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ

तेरे ने ता मिलना है जे गुण होन, वो तेरे गल चुके हैं। इस रीदा मेरे इस जग में कि क्या तुझ कर्म कमाया, तू कुछ भी नहीं कमाया, उस वाहिगुरु नालों दूर होके हर बिस्तर तेरे गुण गलिया, शरीर नू तू समझा ही नहीं, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन मंदर वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन दुर्लभता वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन सब तो उत्तम अते श्रेष्ठ होण वाले, इस दे विच गुण ही नहीं हन कि इसनू सरोवर आख्या जाए, सारे गुण तां गाल लए हन लोभ नाल, लालच नाल, हंकार नाल, क्रोध नाल, काम नाल, आदि चीजां दे नाल तैं सारे गुण गाल लए हन। काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टाले, सारे गुण तैं गाल लए हन, ते गुणा तो बिना तो उपर मिलदा ही नहीं है। कहंदे हन जे गुण होवन ता पिर मिले, अपने दिल दी तख्ती उते इसनू नोट कर लो, हिरदे उते इसनू उकर लो, इसनू लिख लो कि अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती जो है, अकाल पुरख वाहिगुरु दी जो प्राप्ति है, ओ गुणा दे उते आधारित है, और ओ गुण जिन्हां दी कोई कीमत नहीं है, वो बाजार विकदे नहीं हैं, तुसी खरीद नहीं सकते, अमुल गुण हन, अते अमुल गुणा दा तू व्यापार नहीं कीता, अवगुणा दा तू व्यापार करदी रही है, अवगुण तू सिखदी रही है, लेकिन ओ ते अमुल गुण हन, अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी, अमुल भंडार। कहंदे हन जे

इसका अर्थ हर गुण गंफो, गंफो मैंने माला प्रभु, हार प्रभु, गुंदो केंदे हर गुण हरी दे वाहिगुरु दे गुणा दी माला प्रो के गल दे विच पहन लो। कितना पवित्र, कितना उच्चा सुच्चा बाबा जी का उपदेश है। अकाल पुरख वाहिगुरु की भगती करनी है, भगती दे विच वख वख स्टेजेस हैं, वख वख स्टेजेस हैं। एक स्टेज है जिथे सुरत शब्द का समेल हुंदा है, सुरती दे नाल ध्यान दे नाल अपने अंदर उस परम ज्योत नू अनुभव किया जाता है। सुरती दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु नाल लिव लगाई जाती है, पर असी की उस हुणे ही उस अवस्था च हां कि असी उह कर सकांगे। साडा तो मन जिहड़ा असी पाठ करन बैठांगे तो इधर उधर खिंड जाएगा, वो एडवांस लैवल है। भक्ति दी एक स्टेज दे विच ज्ञान बड़ा परिपक् हुंदा है, गुरु दा ज्ञान, तपन तप गुर ज्ञान, तपा दा तप है गुरु दे ज्ञान नू अपने अंदर उतार लैना, गुरु दे ज्ञान नाल अपने जीवन नू अपने विचारां नू भर लेना, अपने विचार अपने ना रहन, सिर्फ गुरु दे विचार ही विचार साडे अंदर रह जान, अते उना विचारां नू एक्सरसाइज करनी, ए भी एक मंजिल है। तो अलग अलग अवस्थावां हन। दास तो अज भी पुछया गया कि इह सब कुछ सुनिया है पर असां हुण की करना है। असी हाईएस्ट लेवल तो ते आरंभ कर नहीं सकते कि बहुत कोई उच्चे अभ्यास की गल की जाए कि सुरती नू दसन द्वार च किवें टिकाओ, त्रिकुटी च किवें टिकाओ, ओ ते काफी सारी अवस्था बनन तो बाद काफी सारा सिमरन अभ्यास बोल के करन तो बाद आहिस्ता आहिस्ता ओ जो परपक हुंदा है तो फिर असी उस अवस्था ते जाने। सब तो पहला ते सानू भगती करन दे वास्ते जेड़े जरूरी गुण हन उही धारण करने पैणगे ते उही सिखने पैणगे। जे उठना बैठना ही नहीं आंदा, गुणा दा भाव उठना बैठना ही नहीं आंदा, खाना पीना ही नहीं आंदा, बोलना चलना ही नहीं आंदा, ते गल्लां असी करिए बहुत डीप लेवल दियां, ब्रह्म ज्ञान दियां, सुरती दे अभ्यास दियां। सुरती दा अभ्यास किवें हो सकता है, सुरत शब्द दा अभ्यास किवें हो सकता है। अंदर वो इतनी सूक्ष्म वस्तु है, हर जी सूक्ष्म अगम है कहो कितविद मिलिया जाए, वो इतना सूक्ष्म है, मत साड़ी इतनी मोटी है कि जिसनु उठना बैठना नहीं आंदा, ओ मोटी मत ओ सूक्ष्म वस्तु नु एकदम किस तरह नोटिस कर लेगी, किस तरह उस दे नाल जुड़ जाएगी, जिसका ना कोई रूप ना रेख ना रंग आकार शकल कुछ भी नहीं है, असी उस दे नाल किवें जुड़ सकते हाँ जबकि असी सामने जींदियां चीजां दे नाल सही तरह जो है इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जब सानू उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, ये तमाम जीवन दे विच जो वर्तों च लियाउण वाले शुभ गुण हन, अगर यही नहीं आंदे तो सब तो पहला सानू वो गुण सीखने पैण। बाबा जी बाणी दे विच आखदे हन निर्गुण राम गुणे वस होए, उसने जिथे गुणा दी धरती तैयार है उथे वस आना है, उथे उसने अपीर होना। निर्गुण राम गुणे वस होए, ते तेरे गुण गल चुके हैं, किवें आवे तेरे नेड़े, तू जो मर्जी कर ले। पहला ओ शुभ

गुण धारण कर, शुभ गुण सिख। महाराज जी बाणी की पंक्ति इस सब्जेक्ट के उत्ते एक एक जो आप जी सुनावांगा वो हीरे लालां दे विच जड़न वाली पंक्तियां हन। कहिंदे हन सुहागणी शिंगार बनाया गुण का गलहार। सुहागणा ने रब दियां सुहागणा ने कहिंदे अपने आप नूं सजा लिया कादे नाल, गुण का गलहार, गुणा दा गल दे विच हार पहन लिया। गुण ही गुण हन, एक भी अवगुण नजर नहीं आता उन्हां दे अंदर, एक भी अवगुण नजर नहीं आता। जब तक एक भी अवगुण है उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने नजदीक नहीं आना। और आप जी नूं एक लाइन होर बहुत जो गहरी है, बहुत डूंगी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी, वो भी सुनावा। लोग नाम दी गल करते हैं, नाम दी, महाराज जी आखते हैं नाम भी गुणा तो बिना प्राप्त नहीं होना, नाम भी गुणा तो बिना प्राप्त नहीं होना। और हुण पंक्ति सुनो, क्योंकि मेरी आदत यह है, गुरु बाबे की कृपा है कि जो भी लफ्ज आखना है वह गुरबाणी चो आखना है, बाणी चो बाहर कुछ नहीं। महाराज जी आखते हैं नाम भी जे गुण नहीं हन तो मिलना नहीं है। बाणी की पंक्ति इस तरह है, कहते हैं गुण ते नाम प्राप्त होए, गुणा तो ही नाम की प्राप्ति होनी। जे नाम दे योग ही नहीं हो, जो गुण ही नहीं हन जो नाम संभाल सकन, नाम समझ सकन, जो गुण ही नहीं हन ते नाम भी नहीं प्राप्त हो सकता। और नाल ही एक होर इंटरेस्टिंग गल आखी है कि नाम प्राप्त करने दे वास्ते गुण चाहिए हन, नाल ही आख्या है कि नाम प्राप्त करने दे वास्ते अपने आप नू मारना पैंदा है। आप मारे ता पाए नाओ, दो गल्लां महाराज ने आखी, आप मारे ता पाए नाओ। एक नाम प्राप्त इस तरह हुंदा है कि अपने आप नू मार ले। अपने आप नू मारन दा मतलब अपनियां तमाम अवगुणा वालियां आदतां, तमाम अवगुणा नू मार ले। अपने आप नू मारन दा भाव यह है, अपनी उस होमे नू मार ले, उस जिद नू मार ले, उस हठ नू मार ले, उस कठोरताई नू मार ले, उस क्रोध नू मार ले, जिसनू मारन तो बाद नाम ने प्राप्त होना है। अते कहिंदे हन सब तो वड्डा गुण ही यह है, गुणां दे विच्चों सब तो वड्डा गुण यह है कि अपनी होमे नू मार ले, अते ओ गुण जदों तुहाडे पास है तां तुहानू नाम दी दात प्राप्त होएगी। भोलिया होमे सुरत विसार, कहिंदे ऐ भोले इंसान होमे वाली सुरती नू विसार दे, होमे मार, विचार मन अपने मन च विचार, होमे नू मार, गुण विच गुण लै सार। कहिंदे गुणा विचों गुण, सारे गुणा विचों जो सब तो वड्डा गुण है वो कहिंदे होमे नू मारन दे विच है। कहिंदे उस गुण की खबर लै, उस गुण की सार लै। कहिंदे गुणा तो बिना अकाल पुरख वाहिगुरु ने तेनू मिलना नहीं है, और तेरे गुण गल चुके हैं, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, गुण तेरे गल चुके हैं। सब तो वड्डा अवगुण है होमे दा, अते होमे दे नाल अत्यंत किस्म दे होर तेरे अंदर अवगुण हैं। कहिंदे हैं अवगुणा दे नाल तू भरी पई है, किस तरह तेनू मिलेगा। गुण तेरे तमाम गल चुके हैं, अवगुण ही अवगुण तेरे अंदर हैं। ते ऐ जीव तू सुंदर बनता है, तू सुंदर सुंदर सुगंधियां लगाना है, तू रस भोगदा है, स्वाद माणदा है, श्रृंगार करदा है। इस श्रृंगार दा मतलब की होया, जद ओ पिर ही नहीं है तो श्रृंगार किहदे लई है। उस पिर ने गुणा दे वस आना है, गुण तेरे पल्ले नहीं हन, पिर तेरे तो दूर है, पिर तो तू सखनी है, फिर तू श्रृंगार करी फिरदी है। इन्हां श्रृंगारां दा कोई अर्थ नहीं है। एक दफा वो प्रेम नाल इस पंक्ति फिर सुन लीए, गा लीए, आप जी भी गाओगे।

अकाल पुरख वाहिगुरु पति दे मिलन तो बिना इस काया नू जो मर्जी सजा लो, श्रृंगार लो, सुंदर बना लो, कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो सब श्रृंगार विकार, सारे विकार, क्योंकि अंदर ले सारे गुण गल चुके हैं। आज भी सारी ह्यूमन सोसाइटी दी, एक कौम दी नहीं, सारी ह्यूमन सोसाइटी दी ए हालत है कि हरी वाहिगुरु तो विसरन दे नाल अंदर ले शुभ गुण गल चुके हैं, पर श्रृंगार दी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी ब्लूम कर रही है। फैब्रिक इंडस्ट्री हुई, डिजाइन इंडस्ट्री हुई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हुई, ऐ तमाम किस्म दी जो इंडस्ट्रियां हैं, वाई दे आर फ्लरिशिंग सो मच, बिकॉज साडे अंदरले गुण वो ते रॉटन हो चुके हैं, वो ते गल चुके हैं, नाउ टू हाइड दैम, उन्हां नू लुकोण लई असी अपने आप नू बाहरों सुंदर दिसण दी कोशिश करदे हां। पर कितने भी असी सुंदर होइए, जदों ही असी कौड़ा बोलांगे तो अंदरली असलियत ने जाहिर हो जाना है। जदों असी हंकार करांगे उदों अंदरली जो ओह गलियापन है उसने जाहिर हो जाना है। जदों असी रूढ़ होवांगे उदों उस अंदरले गलेपन ने जाहिर हो जाना है। तो कित्थे छपावांगे बाहरली खूबसूरती दे नाल अंदरली कुरूपता नूं? जे अंदर क्रूप है, फिल्थी है, अगली है, तो बाहरले श्रृंगार ने उसनू टक नहीं सकना। अते जितनी देर तक अंदर फिल्थी है, क्रूपता है, उतनी देर तक किसी ने प्यार भी नहीं करना, क्योंकि प्यार भी सुंदरता नू हुंदा है, अते सुंदरता गुणा दे विच हुंदी है, वस्तुआ दे विच नहीं हुंदी। गुरु बाबा जी बहुत डीप गल कर रहे हैं, कहते हैं तू पिरवाली नहीं, तेरे अंदर वो गुण नहीं हैं, फिर ते तो दूर है, ते तू श्रृंगार कर दी फिर दी है। आओ श्रृंगार दे मतलब होर सुनिए। गुरु बाबा जी कहते हैं उन्हें गुणा नू वापस लिया। बस आज दे साडे कीर्तन दी जो थीम है, जो विचार है, वो ए है कि साडे गुण गल चुके हैं, उन्हें गुणा नू वापस लियाओ। किवें लियाना है वो भी विचारांगे, और उन्हें गुणा नू लियाण तो बिना जो अगे दी जो भक्ति है, अकाल पुरख वाहिगुरु नू मिलन दे जो होर ढंग हैं, एडवांस लेवल हैं, उन्हां तक तुसी पहुंच ही नहीं सकते जे तुहाडे कोल बेसिक जो मैरिट्स होनियां चाहीदियां हन, गुण होने चाहिए हन, अगर उही नहीं हन, जब बेसिक्स ही नहीं हन, तो अगां दी गल किवें हो सकती है? आओ सुनो, गुरु महाराज जी आखदे हन, हुण पुछिए सच्चे पातशाह गुण किवें लियाईए, क्योंकि आप जी ते ए आखदे हो कि सुहागणी श्रृंगार बनाया गुण का गलहार। आप जी दी बाणी च ते ए दस्या है कि गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है, गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है। गुरु बाबा जी आखदे हन ए जिहड़ी काया गल चुकी है ना, इस नूं हुण बदल डालो। कहिंदे काया कोमल फुल गुण, एक काया एक बहुत कोमल जिही टहणी है, कोमल जही एक प्लांट है, कोमल जही टहणी है, काया कोमल फुल गुण, अते गुणा दे फुल इस काया दे उत्ते नजर आने चाहिए। काया कोमल फुल गुण नानक गुप्पस माल, गुप्पस का मतलब गुंद, प्रो बना माला, काया दी टहणी दे उत्ते ही गुणा दे फुल तेरे लग जान, अते उना गुणा दे फुल्लां नू चुन चुन के तू माला बना, एनी फुल्ली रौंग करे, एना फुल्लां दे उत्ते ते ओ रीझदा है, प्रसन्न हुंदा है, खुश हुंदा है, ए फुल उसनू अट्रैक्ट कर सकदे हन जिहड़े गुणा दे फुल हन। अवर के चुनिए डाल, कहिंदे होर डालियां तो की फुल तोड़दे फिरदे हो, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ, ਡਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਚੁਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁੱਪ ਸਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਪਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲ ਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਗੁਣੇ ਵਸ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਣ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

सत्य संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहते आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नू, जदों वो पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जाती है। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नू उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई हो, श्रृंगारी पई हो। पर केड़े केड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतो दया धर्म श्रृंगार बना, इस श्रृंगार बना। ऐ श्रृंगार है, ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जो लफ्ज दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उथे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ऐ असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नू जो महाराज जी ने जोड़िया उसके विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देन वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नू देन वेले नहीं संतोखी बन जाना। उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं है, दूसरे प्रति असी संतोखी, जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उन्हां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यों ल्यों कर फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरते हैं। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार का सवाल आता है, देण का सवाल आता है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नू हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नू देख के उसनू बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। हुण अपनी जिंदगी च जिन्हां ने पुछया है, यह सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन च इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजां नू एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शंस दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भक्ति आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभा दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकता, तुसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इस नू अज ही त्याग के चले जाओ, और अज सुगंध कसम लाओ महाराज के चरणों च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस होए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नु दूर कर देना, वो अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसे तो अपने आप नू सुपीरियर ना समझना। ए नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसे भी तरह मेरे तो कम हन, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ए आदतां हन, ए सुभा हन, पहला ए तारण करने हैं। ए अज असी
ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਅਗਲੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਕਰ ਅਦਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜਾਨੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਲਿਆਣੀ, ਸਾਦਗੀ ਲਿਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਪੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਹਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਸ, ਸੁੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾ ਔਰ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ,
क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते, लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियां च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसी? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिए है, उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनू भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है। डिसिप्लिन दे विच रहना, संजम दे विच रहना, सील संजम सुच, कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन। सील संजम सुच, सुच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नूं वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नूं सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच दा नामो निशान नहीं रहा, असि नाले खाई जाने हैं, नाले लिखी जाने हैं, नाले खाई जाने हैं, नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही जूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं, कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील संजम सुच पन्नी, कहते पन्न दिती है, ये अवगुण हैं, खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही, तो ये बनाया किसने है, किमें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है या नहीं बनाया, खाज अहाज जो गलत मलत है वो असी खान लग पे, रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं, तुसी कदे सोचो ते सही वो लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े ओवन्स दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वो बहुत मन दी शांति चाहते प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, कोई भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं, पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे सारे दिन दे थके मंदे, ते उस किस्म की एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने तैयार किया है, तो असीं बाहर बैठ के उसनू रैलिश करते हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन या नहीं सन, कितने ऐसा तो नहीं कि साढ़े ही खाने नू उसने पहला टेस्ट करके देखा होवे कि स्पाइस ठीक है या नहीं है, हाउ डू यू नो, पर साढ़े च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंदन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आई हैं पूछने लगियां कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहा नो आई हैव माय ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट टेकिंग इवन टी फ्रॉम अस एनीथिंग इवन वाटर, मैं क्या इसका कारण यह है कि इको ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोगों के जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं क्या हैव यू वॉश यूर हैंड्स, कहती नो, मैं क्या देन आई कैन नॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वॉन्ट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश यूर हैंड्स, क्योंकि क्लीन नहीं है। तो कहती हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट, इस करके मैं कहा मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ये अवगुण हैं, असा ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनू पहला सीखना है, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना ये तमाम पहनना ये सब कुछ सीखना है। और सब तो वड्डे जो गुण हैं वो है निम्रता, वो हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे दे चरना की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास आई, वो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, मिठत नीवी नानका गुण चिंगियाईया तत, फिक्का बोलन की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने, नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगा सटिए मूर थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए, पाणा जुतियां नू आखदे हन, कहिंदे हन दरगाह च उसदे जुतियां पैंदियां हन। नाउ थिंक जदों भी तुसी फिक्का बोले हो ते तुहाडे उत्ते आ कुछ लागू हुंदा है, फिक्का दरगा सटिए मूर थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए उसनू मूर्ख आख्या जांदा है,
سو کس طرح فقہ بول سکتے ہو؟ اے تمام چیزاں نو آلٹر کرنا ہے نا، اینا تمام چیزاں نو بدلنا ہے، اے سارے شبھ گن اپنے اندر دھارن کرنے ہن، جے گن نہیں ہن تے ون گن کیتے بھگت نہ ہوئے۔ کسے تو جا کے پکتی دا سوال نہ پوچھنا کہ پکتی کیویں کرنی ہے، جے اس دی گراؤنڈ ہی تیار نہیں ہے، جے شبھ گن ہی تیار نہیں ہے۔ اج گنا دی گل کیتی ہے، وچ از دا گراؤنڈ ورک۔ کل نو اسی جو من اور آتما دی تھوڑی جی وچار سمرن ابھیاس دی وچار کران گے، آپ جی کرپا کر کے سمے سے راؤ تاکہ کل نو شام دے کیرتن سارے کیرتن کنکلوڈ ہو جان گے۔ تو آؤ پریم نال اس پنکتی نو گاؤ کہ مندہ پھر بن کیا شنگار، پھر اکال پرکھ واہگرو تا نیڑے آندا ہے، جے گن ہون جے او گن تیرے اندر گلے پئے ہن تے او تے تیتوں بہت دور چلے گیا ہے، تے تو اپنے آپ دی جو فلت ہے اگلی نسا ہے اس نو تو صرف ٹکی جا رہی ہے شنگار کر کے سندر کپڑیاں نال، گہنیاں نال، کاسمیٹکس نال، پرفیومز آدھ دے نال۔ کہندے ہن اس شنگار دے نال واہگرو نے نیڑے نہیں آنا، کیونکہ اس نو تیری اندرلی حالت دا پتا ہے کہ اتنے ہر دوسرے تیرے گن گلے، یہ تیری حالت ہے۔

ども。

महबूबे की मत अगे कहे कि निमाणे निमाण निकाणे निकाण संकत श्री गुरु संत हजूरी देकर बड़ी अकीदे के नाम मिल बैठी गुरु शासन जी आप जी सरकार के काबिल हो जो आप जी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बच्चों आप जी ने समा कटिया जो आप जी ने सोच लिया कि आप दरबार में जाना है एक गल नाल ही घट आय हो गई सब कुछ टूर पैंड आगे हो गई थे पैसा जी ने आप जी बड़े सुंदर अंदाज के नाल कुछ संगीत गलत की सत्संगो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रणजीत सिंह साहब जी दशहर साहब जी कान जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सत्संग जी जो संगीत है गाने का यह गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना की गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत न बनता गल है आदि गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की वोटी ने मिली पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है साधन जी पैसा भी कहा तो हाली का राह बिल्कुल नहीं मिलता सी इसे तंत्र शिव गुरुग्रंथ तो पीठ है मैं दो गल कह के सात संगी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाना ते पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आद का स्वरूप है ना परमेश्वर यह पहले की बात है जब जल सू समझ आई कीर्तन की है तो फिर तो सात संगी आवाज की लौट नहीं झगड़े की लौट नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राश पच्ची मिनट टाइम है राश तकरीबन 20-22 मिनट अंग्रेजी समाप्ति करेंगे शब्द की टीक है आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोट बनाणी राग तकलीफ है शर्म करांगे दावे नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफ है आओ आपकी मदद का जवाब मैं पूछ सदे में जब नजीज से वाहे